0: 5, and Northland face Wellington at 10 past 7.
1: Sports News.
2: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
3: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
4: दुख के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय राम दिन की पुत्री स्वर्गीय चंद्रबेन की बहू स्वर्गीय प्रीतम बान उर्फ मदन की पत्नी प्रीतेश रितेश नितेश और जितेश की माताजी रीता कुमारी बेन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई है। फ्यूनरल को हेल्ड किया जाएगा 1 PM ऑन सैटरडे एट एंस फ्यूनरल होम्स एंड ऑनसाइट क्रिमेशन 11 बोल्डरवुड प्लेस विरी में। फॉर ट्रिब्यूट्स प्लीज कॉल प्रीतेश ऑन 0223627643। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय राम दिन की पुत्री स्वर्गीय चंद्र भान की बहू स्वर्गीय प्रीतम भान उर्फ मदन की पत्नी प्रीतेश रितेश नितेश और जितेश के माताजी रीता कुमारी बहन की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई है। फ्यूनरल टू बी हेल्ड एट 1 PM ऑन सैटरडे एट एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशन 11 बोल्डरवुड प्लेस विरी। फॉर ट्रिब्यूट्स प्लीज कॉल प्रीतेश ऑन 0223627643।
3: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Yo. Radio Pub.
1: Kia ora, namaste, sat sri akal, assalam alaikum, bol aapka, swagat karte hain aaj ke Radio Pub show mein. Radio Pub show bole to Lunchbox show ka sequel, kyunki main yahan pe baatein to continue karunga jo kuch baatein jo maine kahi thi over the weekdays. तो वो मैं दोहराऊंगा और साथ में ऑफकोर्स यहाँ पे और भी नई बातें होंगी. इस लेटेस्ट खबर क्या है आज पे वो होगा, प्लस आप मुझे बताइए आज का दिन सैटरडे कहलाता है, 19 तारीख है आज, और क्या कर रहे हो आप? लेजी बने हो या फिर बाहर आ चुके हो? यू रोमिंग अराउंड, यू आर इन द मॉल, और यू आर बैक टू वर्क लाइक ऑफ होम्स एंड ऑल, जो आप घर पे काम करते हैं, या फिर यू स्टिल एट वर्क? बिकॉज ऑफकोर्स being in New Zealand, it is tough, yaar. मतलब यहाँ पे hardly I would see that a person will have only one job. हो सकता है एक ही job होगी, लेकिन businesses ऐसे होंगे and few people might be doing 2-3 jobs, जैसे कि मैं हूँ. But मैं इसे job नहीं कहूँगा, this is more like my hobby, passion कहूँगा मैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन तो मेरा ब्रेड एंड बटर तो रियल स्टेट शूट्स है. दैट मीन्स जो भी हाउस बेचना चाहते हैं वो एजेंट को कॉन्टैक्ट करते हैं और एजेंट लोग हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, सो दैट वी कैन मेक दैट प्रॉपर्टी लुक सो ब्यूटिफुल, सो नाइस. बट यस, आप बने रहिए, मेरा नाम केतन है, मैं हूँ अभी से लेके 6 बजे तक, 12 से 6 घंटे, काफी टाइम बात कर रहा हूँ, बट इट गोना बी अमेजिंग. काफी बातें हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा. सो या स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग टू मी आज के इस रेडियो पब में, ओनली ऑन हम 104.2 FM के जरिए. रोआ भैया, रोआ, भूलना मत, रोआ रोआ.

वेलकम बैक। चलिए इस आर की सबसे पहली खबर पढ़ लेते हैं और वो ये है कि न्यूजीलैंड के टिमरु में एक वुमेन को अपनी डेली बीच वॉक के दौरान एक ऐसी डिस्कवरी मिली जो संडेज के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। पीपा येट्स नाम की वुमेन सेंट एंड्रयूज बीच पर वॉक कर रही थी जब उन्हें बीच पर कुछ अनयूजुअल बोन्स नजर आए। बाद में आइडेंटिफाई किया गया कि ये बोन्स मोआ न्यूजीलैंड के एक एक्सटिंक्ट बर्ड के हैं। मोआ एक फ्लाइटलेस बर्ड थी, यानी कि ये उड़ नहीं सकती, पर ये बर्ड्स न्यूजीलैंड में काफी लंबे समय से कॉमन थी और एक्सटेंट की कगार पे भी थी, लगभग 500 साल पहले। जी हाँ, 500 साल पहले ये हो चुकी है खत्म। बट ये मोआ की ये डिफरेंट स्पीशीज और कुछ स्पीशीज की हाइट लगभग 2 मीटर तक हो सकती है। और इस डिस्कवरी की खास बात यह है कि बीच और कोस्टल इरोजन के वजह से पुराने लेयर्स ऑफ सॉइल और फॉसिल्स कभी कभी सरफेस पर आ जाते थे और टिमरु रीजन में पहले भी मोआ बोन्स और फुटप्रिंट्स मिल चुके हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। वेल यस, मैं इसकी आर्टिकल भी डालूंगा जिसे आप डेफिनेटली सुनिए, पढ़िए जाके ऑन हमारे रोआ पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, hum.roa.nz।

0: weekdays 6 to 10 a.m.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर dish को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
5: Briscoe's Lady here. If you haven't heard, I'm on the road celebrating Briscoe's biggest birthday yet, and I'd love you to join me. I'll be visiting Briscoe stores across Auckland today with birthday treats. See online for participating stores and times.
6: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
7: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Add colour to your space with evergreen azaleas, now $16.49 for a 125mm pot. Or freshen up your deck with Boriswood Deck and Timber Stain, now $185 for 10 litres. Mitre 10, your home for outdoor living.
8: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
0: Hum, playing Bollywood's biggest hits.
9: चलिए बात करते हैं आज के दिन क्या सेलिब्रेशन चल रहा है देश दुनिया में. ऑफ कोर्स मिड डे है, तो अभी भी आपके पास टाइम है. इफ यू वांट टू विश समवन और यू वांट टू सेलिब्रेट विद समवन और यू वांट टू एंजॉय योरसेल्फ, तो ये मैं लिस्ट बता देता हूँ. 19 सितंबर यानी कि आज का दिन को सबसे फन सेलिब्रेशन में से एक माना जाता है. टॉक लाइव अ पायरेट डे इस नाम से, और इस दिन लॉन्ग पायरेट स्टाइल लैंग्वेज और एक्सेंट में बात करके एंजॉय करते हैं. बेसिकली एक नॉर्मल कन्वर्सेशन को थोड़ा फनी और एडवेंचरस बनाने का दिन. इसके साथ ही कई नेशनल लव और लंच डे भी मना रहे हैं, यानी कि आज के दिन नेशनल लव और लंच डे भी है. ये डे स्पेशली लंच शेमिंग के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट करना है और इंकरेज भी करता है कि स्कूल्स में बच्चों के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंचेस को रिस्पेक्ट किया जाए. दैट इज कूल. फूड लवर्स के लिए भी एक स्पेशल डे है, नेशनल बटर स्कॉच पुडिंग डे. मतलब एक क्रीमी स्वीट बटर स्कॉच पुडिंग एंजॉय करने का परफेक्ट एक्सक्यूज. 19 सितंबर को यानी कि आज के दिन नेशनल डांस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. इसका फोकस जो है वो डांस को एंजॉय करने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज और हेल्थ लाइफस्टाइल को एंकरेज करना भी है. और एनवायरनमेंट के लिए नेशनल क्लीनअप डे भी है, जो लोगों को अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखने और कम्युनिटी में क्लीनअप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज करता है. पेट लवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप डे भी है, एक रिमाइंडर कि डॉग को पेट करना सिर्फ फन नहीं बल्कि उनकी केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. अमेजिंग राइट. सो नाउ यू टेल मी विच सेलिब्रेशन यू गोना बी सेलिब्रेटिंग विथ योर लव्ड वन टुडे और मे बी बाय योरसेल्फ. तो आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट करके बता सकते हैं.
0: Yeah. Radio Pub.

Welcome back. You are listening to Radio Pub. और ये रहे कुछ messages. कुछ नहीं actually. मैंने दो choose किए हैं. Out of two. तो basically पहला message है वो आया है. इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया. But ये कहते हैं Hey Ketan, glad to hear your voice on weekend as well. अरे क्या बात है. Thank you यार. I'm definitely celebrating National Dance Day today. I'm going to put on some Bollywood music, get the family together and have a little dance at home. What better way to celebrate a Saturday? सही है, बात तो सही है यार. मतलब एकदम perfect day, perfect time, and then yes, family gathering भी हो रही है, तो amazing, amazing. Well yes, दूसरा message है, ये है नेहा ने भेजा है. वो कहती हैं, Hi Ketan, I'm choosing National Cleanup Day today. Since it's a weekend, I'm finally going to clean up the house and get a few things organized. Not the most exciting celebration, but definitely one of the most useful things to do today. That is so true, yaar. I guess, main to chalo yahan pe aaya hu, but meri mom, Khushbu and dad, I think they are doing the same thing. Once I get free from here, अगर मैं टाइम से पहुंच जाता हूं और उजाला हुआ और धूप अच्छी हुई, होपफुली हे भगवान बारिश मत की हो पूरे दिन, तो मैं थोड़ा लॉन भी करूंगा आज. मॉम डैड पूछ रहे थे मेरे को कि हम कर लेते हैं. मैंने कहा नहीं यार, आप रिलैक्स रहो क्योंकि थोड़ा हैवी है वो. एंड ऑब्वियसली मॉम माइट डू इट बट स्ट्रगल एंड दे डोंट अंडरस्टैंड द ब्लेड्स पावर एंड ऑल राइट. एज एन आप वॉक करें और थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद ब्लेड कट भी सकती है, तो उस वजह से मैंने कहा कि ना इट्स ओके, आप बाकी की चीज़ें करो. फॉर एग्जांपल वो जो ट्रिमर आता है, जो एज कटर होता है, वो मैंने उनको सिखा रखा है, तो वो मम्मी आराम से यूज़ करती है. बट अमेजिंग यार, आप बताइए आप अपना दिन कैसे बिता रहे हैं. इफ़ यू आर विद फैमिली, हाउ यू विल गोइंग टू स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
4: अब हमारा क्या होगा?
5: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना
3: तो क्या करें?
6: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
7: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
8: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.

0: Radio Pub.
1: Kia ora, namaste, welcome back. You are listening to Radio Pub. Well, yes, अभी सेकेंड आवर का स्लॉट जो है वो शुरू हो चुका है. इस आवर में भी एक से बढ़कर एक गाने चलाऊंगा और कुछ अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ. तो आप अगर वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, बरकरार रखें. बस साइड में स्पीकर लग लिए, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और मेरी आवाज को एंजॉय करिए. गाने भी एक से बढ़कर एक करेंगे. अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई पर्टिकुलर गाना आप सुनना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं यहाँ पे 5599 पे. एक रिक्वेस्ट आई है गुजारा, तो वो मैं चलाने वाला हूं इन कुछ गानों के बाद. तो आप एंजॉय करिए एंड कीप लिसनिंग टू माय शो रेडियो पब आज के दिन अंटिल 6.

वेल एक आर्टिकल के हिसाब से ट्विजल में थर्ड सेल टावर लगाने को लेकर लोकल कम्युनिटी ने कंसर्न उठाए हैं, उन्होंने रेस किए हैं। रेसिडेंट्स का कहना है कि एरिया में ऑलरेडी दो सेल टावर्स हैं और नए टावर के लिए प्रॉपर कम्युनिटी कंसल्टेशन नहीं हुई है। टेलीकॉम कंपनी कॉनेक्सा का कहना है कि हॉलीडे सीजन में ट्विजल की पॉपुलेशन और नेटवर्क डिमांड काफी बढ़ती नजर आ रही है, इसीलिए थर्ड टावर से नेटवर्क कैपेसिटी और रिलायबिलिटी काफी इंप्रूव होगी। सिंपल शब्दों में कहूं तो कम्युनिटी टावर की जरूरत और लोकेशन पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, जबकि कंपनी बेटर नेटवर्क कवरेज और कैपेसिटी को रीजन बता रही है। क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट। वैसे आप बने रहिए, मैं लेके आता हूं स्पोर्ट्स की खबर, देखते हैं क्या चला है, क्या स्कोर रहा है, क्या मैचेस हैं जो आप एंजॉय कर सकते हैं आज के।

0: चलिए स्पोर्ट्स की खबर ले लेते हैं। ऑल वाइट डिफेंडर लिब्राटो कैसे सो सॉरी यार अगर मैं ये गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो, बट लिब्राटो को यूके में स्पीडिंग के केस में 6 मंथ ड्राइविंग बैन मिला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिब्राटो को एक ही रोड पर जहां लिमिट करीबन 50 माइल्स पर आर थी 6 बार स्पीडिंग टिकट 6 बार स्पीडिंग करते हुए पकड़े गए। एक इंसिडेंट में उनकी स्पीड करीबन 68 माइल्स थी और उनको अब कोर्ट में अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट भी कर ली है एक्चुअली उन्होंने और गिल्टी प्ली भी दी है। कोर्ट ने उन्हें 6 मंथ की ड्राइविंग बैन के साथ 1023 पाउंड का फाइन भी दिया है, सरचार्ज और लीगल कॉस्ट भी पे करने का ऑर्डर दिया है। ये केस उनके फुटबॉल करियर के बीच एक लीगल सेटबैक है, लेकिन उन्होंने स्पीडिंग ऑफेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है जो कि सही है।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम नसीला नसीला तेरा नैना तू राइले हमरा चैना।

Well, yes, just a reminder, आप जल्दी से रोवा ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, बिकॉज उसके थ्रू अगर आप हमें सुनेंगे तो इट इज कम्प्लीटली गोना बी फैसिनेटिंग, बिकॉज काफी कुछ कंटेंट जो है हम वहीं पे डालते हैं, पॉडकास्ट से लेके प्लेलिस्ट से लेके हमारी बातें, और यस अभी सोशल रील्स भी हमने वहाँ पे शुरू करी, यानी कि हम जो रील साइज में जो कंटेंट डालते हैं वो भी आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स कुछ नई नई बातें भी. सो यस, इफ यू वॉन्ट टू लिसन सम प्ले लिस्ट, लेट्स से इफ यू गोइंग और इफ यू ट्रैवलिंग फॉर लॉन्ग ड्राइव, और इवन आप काम करते करते भी हमें सुनते हैं, इफ यू फील लाइक थोड़ा सा ब्रेक लेके आई वॉन्ट टू लिसन टू सम नाइस क्लासिक म्यूजिक. सो यस, रोवा का सबसे नंबर वन म्यूजिक स्टेशन है बॉलीवुड का, 60s और 70s के गाने उसकी प्लेलिस्ट हमने रेडी कर रखी है, उसके बाद 80s के भी गाने वहाँ पे हैं, फिजी वर्जन और फिजी कीर्तन के भी वहाँ पे गाने हैं, चढ़दी कला इफ यू लव पंजाबी सॉन्ग्स, एंड ये साथ में राहत फतेह अली खान जी के गाने भी आप एंजॉय कर सकते हैं.

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
4: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
5: IKEA. Few things sound better than logs crackling in a fire, rain on a tin roof, my voice, and the words you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
8: Yo.
6: Radio Pub.
9: वेल कम्युनिटी इवेंट्स के बारे में भी देख लेते हैं। 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में हो रहा है गणेश उत्सव। जी हाँ, वो होगा एक्चुअली कल आखिरी दिन है, तो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, बट कल आखिरी दिन है। जस्ट टू लेट यू नो, शाम के 7:30 बजे से शुरू होगा, 9 बजे तक चलता रहेगा। और ये तो आज के टाइम है, बट ये कल के दिन 12 बजे तक विल हैपन फ्रॉम 12 PM। जी हाँ, विसर्जन जो होगा। कुछ भी अगर आपको नई और यू नो और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो राम मंदिर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उन्हें, 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन। उसके बाद आज और कल के दिन 7:30 PM टू 9:30 PM भारती मंदिर में भी 7 डे श्रीमद् भगवत कथा का आयोजित हो चुका है, वो चल रहा है, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड नॉट श्योर भारतीय संगम, वहाँ पर भी आप जाके गणेश चतुर्थी को एंजॉय कर सकते हैं। साथ में वेद प्रचार वीक विच विल बी हेल्ड फ्रॉम मंडे 28 सितंबर अंटिल 4 अक्टूबर एट 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो, करीबन शाम के साढ़े छः बज के बीस मिनट से शुरू हो जाएगा। और उनका जो मेन हाईलाइट है वो होगा 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड।

0: एक सवाल किया था आपसे थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट आवर में कि अनुष्का शर्मा ने कौन सी ऐसी फिल्म में एज अ जर्नलिस्ट काम किया है और उसका रोल निभाया और नाउ आई कैन से दैट यू नो माय लिसनर्स आर वेरी एक्टिव इनटू वाचिंग फिल्म्स एंड दे नो दिस एंड ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज पीके आमिर खान जिसमें एलियन होते हैं और बहुत ही अमेजिंग गाने उसके यार स्टोरी भी अच्छी है काफी कुछ सीखने को भी मिला है इन टर्म्स ऑफ रॉन्ग नंबर बट यस आपको कैसी लगी फिल्म आप मुझे बताइए 5599 पे
1: लेडीज एंड जेंटलमैन
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पब, आपका स्वागत करते हैं। एंड यस, अभी कुछ और भी नई न्यूज आई है मेरे हाथ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यस, न्यू टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यू ऑल नो दैट द टेस्ला रिसेंटली हैव लॉन्च्ड द साइबर कैब, आई गेस, राइट? If I'm not wrong, yes, cyber cab. So basically, cyber cab is mostly is a replaceable, like a competition for taxis. Ji haan. But the best thing is there will be no driver inside. And driver छोड़ो, pedal और ये steering भी नहीं होने वाले उसमें. यानी कि आप चलते फिरते room के अंदर बैठे होंगे and the car is just going. So basically, you can control the screen, you can watch, you can enjoy while you are on the route to the destination. So amazing, right? और सबसे खास खास बात पता है मुझे क्या लगी उसमें, पूरी कार जो ना गोल्डन है, लाइक इवन द जो साइड व्हील्स होते हैं, आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, जो कवर करता है लाइक व्हील्स के साइड, क्या बोलते हैं यार, एकदम याद नहीं आ रहा। एनीवेज, तो वो पूरा गोल्डन है, सिर्फ जो टायर्स हैं उनको छोड़ के पूरी कार ही गोल्डन है। इतनी सही लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। आई थिंक आपको ना चेकआउट करना चाहिए एक बार, टेस्ला साइबर कैब।

Well, एक पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया है और आप तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी जो है हमारी है. सो यस फॉर यू व्हाट इज द थिंग नाउ इज दैट आप हमारे या तो रोवाइप पे जाइए या फिर मुझे BF लिख के, BF बोले तो इनिशियल है ब्रेकफास्ट का, वो हमें 5599 पे भेज दीजिए सो दैट यू गेट द लिंक ऑफ इस साल की जो इलेक्शन है. इलेक्शन साल है, ऑफकोर्स आपने देखे होगा रोड्स पे हर जगह कैंपेन चल रहा है. एंड द ड्राइव शो आप सभी के लिए लेके आए एक अमेजिंग यू नो कंटेंट जो कि 5 बजे हुआ था थर्सडे के दिन, और इसे सुनने के लिए आप डेफिनेटली हमें BF लिख के भेज सकते हैं. बट यस, एक्ट पार्टी लीडर डेविड सिमर, उन्होंने वो आए थे यहाँ पे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्कशन किया है ACT's एक्ट पॉलिसी और उनका विजन न्यूजीलैंड के बारे में. उनका टॉपिक जो काफ़ी फोकस भी कर रहा था टूवर्ड्स ट्रीटी ऑफ वाइटांगी, और परमजीत परमार के कमेंट्स पे भी उन्होंने कुछ कमेंटिंग की है. इमिग्रेशन को लेके भी बात हुई है, एक्स प्रपोजल के बारे में भी, एंड देन एडल्ट मिनिमम वेज इस पर भी बात की है. तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको अभी राइट टाइम है टू लिसन टू दिस पॉडकास्ट. एंड या BF लिखिए, मुझे 5599 पे भेज दीजिए.

चलिए बॉलीवुड से कुछ एक रिव्यू आई है मूवी की, वाइब, एक कॉमेडी फिल्म है जो मेनली कुणाल खेमू के ह्यूमर और डायरेक्शन की वजह से काम करती है, और फिल्म में कॉमेडी को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए विटी सिचुएशन, फनी डायलॉग्स और कैरेक्टर का यूज किया गया है। रिव्यू के मुताबिक कुणाल खेमू का ह्यूमर जो है उस पर काफी स्ट्रॉन्ग कमांड फिल्म को यू नो बिगेस्ट प्लस पॉइंट की तरफ लेके जाता है। ओवरऑल वाइब एक लाइट हार्टेड एंटरटेनर है, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो कॉमेडी और इजी गोइंग एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं।

एक मैसेज पढ़ता हूँ आप सभी के लिए. इट्स नॉर्मल टू फील हाउ लो समटाइम्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस. पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स. रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग. रीच आउट एंड टॉक टू अ ट्रस्टेड प्रोफेशनल. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. Call Asian Family, call Asian Helpline on 0800-862-342, 0800-862-342 for free and confidential mental health support. If you or someone is in immediate danger, please call 111 or serve emergency services.

0: biggest hits.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
1: और गानों में जस्ट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sirf Rova par.
1: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: Few things sound better than logs crackling in a fire. Rain on a tin roof. My voice. And the words, you've won a pair of Bose headphones. Be in to win one of 50 pairs when you join Southern Cross Health Insurance by 11th of October. See website for details. T's and C's apply.
5: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
6: Bollywood ke sabse bade hit gaane
7: kabhi bhi kahin bhi mast malang jo
8: yo
7: big radio pub.
8: Buy now, pay later services जैसे Afterpay और Klarna convenient लगता है, लेकिन actually ये भी debt का ही एक form है. Research के according, young New Zealanders ने 4 out of 10 लोग BNPL को debt नहीं मानते और कुछ users repayment के लिए दूसरे credit sources भी use करते हैं. Miss payments पर late fee लग सकती है और debt भी बढ़ सकता है. September 2024 ने से BNPL न्यूजीलैंड के मेन कंज्यूमर क्रेडिट लॉ के अंडर आ गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूजर्स को अब भी फाइनेंशियल हार्म का रिस्क है. इसलिए BNPL उसे यूज करते हुए सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि पेमेंट छोटी है, या ये भी समझना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कि कितनी बोरो आप कर सकते हैं, रीपेमेंट मिस होने पर क्या हो सकता है. ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी को चेकआउट करने के लिए बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई और बिफोर यू बाय एनीथिंग ऑन द लोन बेसिस.

0: चलिए मेरा सवाल यहाँ पे मैं पूछता हूँ, कार में पांच गियर क्यों होते हैं और सिर्फ पांच ही क्यों होते हैं, ये मुझे आप जवाब दीजिए 5599 पे। लेट्स सी कितने इंटरेस्टिंग आंसर आते हैं इस पे।
1: 80s के रेट्रो गाने

चलिए अभी की इस आर की लेटेस्ट खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड प्रॉपर्टी मार्केट में इंटरेस्ट काफी शार्पली बदलता नजर आता है आ रहा है। और एक लोकल न्यूज के हिसाब से अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया बेस्ड बायर्स ने न्यूजीलैंड प्रॉपर्टीज के सर्चेस 190% ईयर ऑन ईयर बढ़ाते हुए देखे हैं। ये इंक्रीज मई में ऑस्ट्रेलियन टैक्स चार्जेस के अनाउंसमेंट के बाद और भी फास्ट हो चुका है। और एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग नेगेटिव गियरिंग और कैपिटल गेन्स टैक्स रूल्स में चेंजेस ने ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टर्स को न्यूजीलैंड प्रॉपर्टी की तरफ से देखने के लिए इंकरेज किया है। ऑकलैंड, सेंट्रल ओटैगो और कैंटबरी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देखा गया है, जबकि सिडनी से सर्चेस 121.3% बढ़ते नजर आए हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ऑजीज अब न्यूजीलैंड में प्रॉपर्टी सिर्फ ब्राउज नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रॉपर्टी सेव और इंक्वायरीज भी ज्यादा कर रहे हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
4: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
5: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
6: And award goes to Indelible Homes.
5: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
7: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुगाव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुगाव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
8: Shh, there's a spring sale on at Elite Bathroom Wear. September only, there's serious savings on luxury bathroom fittings for your dream bathroom. There's a massive range of heated towel ladders, freestanding baths in acrylic, stone and concrete, groove timber vanities, earthy concrete basins, lead-free designer tapware in 7 colours, including brushed bronze everything. Elite Bathroom Wear's massive VIP spring sale is in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroom Wear, Kiwi owned and operated. They love bathrooms.
7: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.

चलिए बॉलीवुड से एक खबर लेके आया हूँ। दृश्यम रिलीज होने वाली है 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री के दिन। वैसे और कुछ भी हुआ था बताइए मुझे, आप बताइए, मैं आप पे छोड़ता हूँ 5599 पे। बट यस, दृश्यम द कंक्लूजन का फर्स्ट सॉन्ग विंगनसा रिलीज हो चुका है। सॉन्ग को रवि बसरूर ने कंपोज किया है, सिद्धार्थ बसरूर ने गाया भी है और लिरिक्स आमिल कियान खान ने लिखे हैं। विंगनसा का जो मतलब है वो बेसिकली है रिवेंज या बदला, और सॉन्ग का डार्क और इंटेंस मूड जो है फिल्म में काफी जान डाल देता है और काफी कंफ्रंटेशन और सस्पेंस को भी इसमें काफी हाईलाइट किया गया। वैसे ट्रैक विजय सालगांवकर के कैरेक्टर पे बढ़ते प्रेशर उनके पास के सीक्रेट्स की तरफ हिंट करता है, और अजय देवगन, तब्बू और जयदीप अलावात स्टारिंग दृश्य द कंक्लूजन 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। एंड एज आई आस्क कि क्या फेमस डायलॉग है, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, आप मुझे भेजिए 5599 पर।

0: नंद्रे नमस्कार।
1: 12 कीर्तन संग्रह आप सभी ने काफी सहयोग दिया है और इसी वजह से रिकॉर्डिंग जो है वो फ्राइडे 25th ऑफ सितंबर को होने वाली है वैदिक सेंटर में पापा टोटो है, और आप सभी पधारिए वहाँ पे, सभी आइए और एंजॉय करें एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट। हम फीजी कीर्तन संग्रह, आप सुनेंगे उन सारे कलाकारों की आवाज जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग करवाएंगे। वेल यस, आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, हम टीम के साथ जुड़िए एंड एंट्री इज कम्प्लीटली फ्री, रिफ्रेशमेंट एंड कावा विल बी ऑन सेल, सो यस You will also have the opportunity to win many many prizes. जी हाँ, आप आएंगे, कुछ competitions होने वाले हैं जहाँ पे आप जीत सकते हैं ढेरों इनाम। आइए अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ मिलते हैं वहाँ पे।

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
5: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
6: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स
5: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन
6: वाओ दीस कबाब्स आर अमेजिंग स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी
5: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव
4: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स दायरा स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन
7: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ
8: और मैं नहीं करता
4: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास
8: ओपन शोकेस है उनकी स्टोरी ओवर है
7: कहाँ ओवर अभी तो शुरुआत है
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटिंग टीबीसी

एक नया आर्टिकल आया है स्टेटिंस के बारे में. एक ये कॉमन मेडिसिन है जो कोलेस्ट्रॉल कम करके हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे रिस्क को रिड्यूस करता है. अब रिसेंट स्टडीज देख रही है कि क्या स्टेटिंस हेल्दी एजिंग और डिमेंशिया का भी रिस्क है उसे भी कम कर सकती है या नहीं. एक डेनिश स्टडी में टाइप 2 डायबिटीज वाले 132,000 से ज्यादा लोगों में स्टेटिन यूज डिमेंशिया के 15% लोअर रिलेटिव रिस्क से लिंक था. लेकिन ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी इसीलिए इसे डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट प्रूव नहीं होता. एक अलग रेंडमाइज ट्रायल में 70+ हेल्दी एडल्ट्स को रिसर्च के हिसाब से बुलाया गया था और उनका ये पता पड़ा है कि मेजर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क जो है वो 30% तक कम हो सकता है. लेकिन डिमेंशिया या डिसेबिलिटी फ्री सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं मिला है.

0: Radio Pub.
1: Welcome back. You are listening to Radio Pub, and yes, stay tuned and keep listening to my show until 6. बहुत ही बढ़िया है. वैसे आपने प्लान्स नहीं बताए आपने. कुछ लोगों ने बताया अपने प्लान्स, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आप भी मुझे 5599 में बताइए, व्हाट इज गोना हैपन, लाइक व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर द इवनिंग और लेट इवनिंग. आप मुझे जवाब दीजिए 5599 पे.

Well, आज 19 है तो देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं. FIFA Under 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, उसे आप एंजॉय कर सकते हैं. ये हो रहा है पोलैंड में. उसके साथ ही और भी इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ क्रिकेट्स में भी हैं, कुछ स्पोर्ट्स अलग फुटबॉल में भी हैं. डेविस कप क्वालिफायर सेकेंड राउंड टेनिस में ये हो रहा है. कल शुरू हुआ था एंड अनटिल 20th ये होने वाला है. उसके साथ ही ग्रैंड प्रिक्स ऑफ ऑस्ट्रिया ये भी चल रहा है, इसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं. और आज के दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स रोड रनिंग चैंपियनशिप वो शुरू होने वाली है, इसे आप देख सकते हैं. एशियन गेम्स वो भी शुरू हो रहा है अनटिल 4th of October जापान में हो रहा है. एंड यस देयर आर फ्यू मोर इवेंट्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन सून, लेकिन जब हो जाएंगे तब बात करेंगे. अभी के लिए एंजॉय करो ये सारे स्पोर्ट्स.

Well, अभी की लेटेस्ट खबर लेके आया हूँ. लिंडिस पास में कैंपरवैन और एक कार के बीच काफी सीरियस क्रैश हुआ था, जिसमें दो लोग इंजर्ड हुए हैं और एक को काफी क्रिटिकल और दूसरे को सीरियस इंजरीज हुई है. एक्सीडेंट फ्राइडे आफ्टरनून यानी कि कल करीबन 3:15 के आसपास स्टेट हाईवे 8 पर क्लेनिंग क्रीक रोड और फिलिप्स रोड के बीच हुआ था. इमरजेंसी सर्विस और सीरियस क्रैश यूनिट साइट पर पहुंच गए और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होने लग गई. क्रैश के बाद लिंडिस पास टेरेस रोड को टेम्परली क्लोज कर दिया गया और मोटरिस्ट को ट्रैवल डिले करने या अल्टरनेटिव रूट यूज करने की एडवाइस भी दी है. बाद में पुलिस ने कंफर्म भी किया है कि SH8 रीओपन हो चुकी है.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: चले थोड़ी स्पोर्ट्स पे भी चर्चा कर लेते हैं। जिम्बाब्वे वुमेन अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 3-मैच ओडीआई सीरीज के लिए प्रिपेयर हो रही है, जो आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2025-29 के पार्ट के लिए है। सीरीज करीबन 24 से लेके 30 सितंबर तक हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाली है। जिम्बाब्वे के लिए ये इम्पोर्टेंट चैलेंज है क्योंकि करंट चैंपियनशिप साइकिल में टीम ने अपने पहले 6 मैचेस जो हैं वो हार चुकी हैं और स्टैंडिंग में करीबन 10वें नंबर पर है। वेस्ट इंडीज कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो 9 में से 4 जीत चुकी है और 7 उसके साथ ही 5th प्लेस पर है और रिसेंटली आयरलैंड को 3-0 से बीट करके आ रही है। ओडीआई सीरीज के लिए दोनों टीम्स के बीच अभी 3 T20s भी अक्टूबर में होने वाली है, 3 से 7 के बीच। देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट उसका।

0: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
1: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
2: और मैं नहीं करता।
0: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास।
2: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
3: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
0: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
2: वेलकम बैक, सो फार सो गुड, बहुत ही बढ़िया जा रहा है शो। आप बस बने रहिए, बिकॉज इस गाने के बाद एक नई ताजा खबर लेके आने वाला हूँ। तो यस, बने रहिए, सुनते रहिए मेरा शो आज का रेडियो पब।
3: ओ हीर की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
4: So what?
3: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
4: Big deal, dude.
3: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर 17 भाई।
4: चढ़िया
3: चा फैशन दा।
4: हाय चुकला रब्बा मेनू।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: शादी कर सकते हैं.
3: क्वीन विक्टोरिया की तरह.
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिल फरेब.

वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं अभी के लिए इस खबर। रोटोरुआ म्यूजियम के सीनिक स्ट्रेंथनिंग और रिस्टोरेशन का जो काम है वो हो चुका है कंप्लीट। ड्रम्स लगभग 10 साल बाद म्यूजियम नवंबर 2016 में अर्थक्वेक सेफ्टी कंसर्न की वजह से क्लोज हुआ था और अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। वेल यस, बिल्डिंग की कीज जो है वो रोटोरुआ लेक्स काउंसिल को हैंड ओवर कर दी गई है, लेकिन लेकिन लेकिन पब्लिक को म्यूजियम देखने के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ेगा, एक नहीं दो साल और। अब एग्जीबिशन डेवलप करने और म्यूजियम के इम्पोर्टेंट कलेक्शंस और ताउंगा को वापस लाने के लिए जो काम होगा और म्यूजियम को 2028 में फुली रीओपन करने के प्लान चल रहे हैं। ये करीबन $73.55 मिलियन के मेजर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसमें 120 साल पुराने हेरिटेज बिल्डिंग को स्ट्रेंथन और रिस्टोर किया जाएगा।

चलिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में थोड़ी नजर डालते हैं। कुछ फिल्में, कुछ नहीं एक्चुअली, बहुत फिल्में रिलीज हुई लेकिन कुछ ही दमदार परफॉर्मेंस दिखा पाई। उसमें सबसे ऊपर एक मैजिक दर्शकों का पाया है, प्यार पाया है, और यस मैजिक को किया ही उन्होंने। 2 करोड़, मात्र 2 करोड़ INR में बनी ये फिल्म जिसका नाम है हनुमान अंश, फाइनली 17 तारीख को रिलीज हो चुकी है यहाँ पे इन ऑकलैंड और लाइक नियर बाय सिटीज में भी। आप मुझे बताइए अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी। 300 क्रॉस हो चुकी है, 300 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। इनफैक्ट जो डायरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 21 साल के, और वो कहती है कि इतना पैसा मैं ना तो कभी सुना है, ना कभी देखा है, और ना ही कभी सोचा कि अगर मेरे पास ही हुआ तो मैं क्या करूंगी। एंड ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया व्हाट आई विल गोइंग टू डू। और इसी चक्कर में उनसे पूछा गया कि आप इतने पैसों को क्या करोगे, तो बोलती है कि आई थिंक द बेस्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट डूइंग द चैरिटी। मतलब आप सोच रहे हो 21 साल की लड़की ये चीज, लड़की नहीं मतलब कोई लड़का भी होता तो भी यू नो द एज जहां पे आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सकते हैं वहां पे ये चैरिटी की बात कर रही है। एक अमेजिंग राइट। एंड ऑफ कोर्स यू नो जिस तरह की फिल्म बनी है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी पड़ता, लाइक यू आर टू मच क्लोज टू डिवोशनल, या फिर एक शब्द होता है ना, क्या बोलते हैं, योगा करने से क्या होता है आप बताइए मुझे। 5555 मैं थोड़ा क्या, अभी वीकेंड चल रहा ना अभी, तो वो क्या शब्द याद नहीं आ रहा, बट आई लिसन टू यू। आप मुझे टेक्स्ट कीजिए 5555 पे, बताइए मुझे कि क्या बोलते हैं उस शब्द को जो योगा करने से मिलता है।

Well, मिल गया मुझे जवाब एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने जवाब दिया है. कुछ लोगों का तीर एकदम निशाने पे लगा है और एक है एक मेरी फ्रेंड उसने भी जवाब दिया है एंड यस ऑफ कोर्स अमेजिंग यार. थैंक यू यार, थैंक यू बताने के लिए. बाकी तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ सीक्रेट है किसी को बोलना मत. मैं एक्चुअली भूल चुका था, मैं एक्टिंग कर रहा था. एक्टिंग नहीं एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ वहाँ पे. बट ग्लैड टू नो फ्रॉम माई लिसनर. वैसे आप मुझे रेटिंग दे सकते हो एक्टिंग मेरी कैसी थी 5599 पे. बट यस, मेडिटेशन इज द राइट वर्ड. मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करने का यू नो योगा करने से मेडिटेशन मिलती है, ये तो टॉप पे है. अब एक्चुअली मैं बातों बातों में ना वो भूल गया हूँ कि मैं एग्जैक्टली ये किससे कनेक्ट कर रहा था. बट एनीवेज आप मुझे ये भी याद दिला देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. मजाक कर रहा हूँ. मैं ऑब्वियसली उससे कनेक्ट कर रहा था जो हनुमान अंश आई है फिल्म, उससे कनेक्ट कर रहा था. बट यस, आपने अगर देखी है फिल्म तो बताइए मुझे कैसी लगी आपको. एंड इज इट वर्थ गोइंग टू थिएटर एंड वॉच इट.

रेडियो पब। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ही बढ़िया रहा आज का शो, आज का मौका, आज की बातें और गाने दमदार। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया अपना टाइम यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड करने का। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आप बस आपने अगर सुना है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई सी ऑन मंडे सेम टाइम नहीं, एक्चुअली टाइम तो अलग होगा ना, लंच वॉक शो करूंगा मंडे। तो यस, 12 से 3 आप मुझे वहाँ पे सुनिए। एंड आई विल टेक अ लीव फ्रॉम टुडे शो। एंजॉय द वीकेंड, एंजॉय द सैटरडे, बी हेल्दी एंड अपग्रेड एंड अपडेट योरसेल्फ इन द AI वर्ल्ड। बाय बाय, टेक केयर।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Briscoe's lady here. If you haven't heard, I'm on the road celebrating Briscoe's biggest birthday yet, and I'd love you to join me. I'll be visiting Briscoe's stores across Auckland today with birthday treats. See online for participating stores and times.
5: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
6: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The Big Sofa and Recliner Sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits. Ye hai Saturday Bollywood Buzz.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
3: 3, 2, 1, रश।
4: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
5: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलोगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स GWM मेलोगांव। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: The beat of Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: राइट, इच्छे वाले भाई साहब, लगा दो कोई डुबचिक डुबचिक है.

0: Express Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
3: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
4: Party up, no. This is DJ Mix.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब उस बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं. अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW and Havel and Omura Jaku.

0: सेल पिंटू।
1: रैम्बो का नाम सुना? टर्मिनेटर का और सलमान भाई, इन तीनों को ना एक मिक्सी में डाल, तीन चार बार घुमा, घूम घूम घूम, जो ग्लास भर के मिल्कशेक निकलता है ना,

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind. Sif Rovapan.
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
2: Craving something new? iVillage at Victoria just dropped a brand new menu with lunch specials to suit every taste.
3: The masalas are ground fresh, in-house every single day.
2: Got dietary needs? They've got Jain options and a fully halal kitchen too. Planning a party? Table service or buffet for up to 150 guests.
3: And every Saturday, enjoy live music with your meal.
2: iVillage at Victoria, Indian Kitchen and Bar, 210 to 218, Victoria Street West.
4: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए यस प्लीज माई टिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के 1 आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ 1 घंटे में कलेक्ट करो टीज एंड सीज अप्लाई स्किप द क्यूज एट माई टिटन मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन
5: Reliance Ventilation System.
6: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है
5: Moisture और ventilation का problem लगता है
6: और पता है मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है
5: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं
7: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111 Reliance Ventilation Systems solving ventilation problems for over 80
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz

0: the DJ Mix.
1: DJ, turn it up. Ow.
2: चन्ना चट दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जस

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में 3.5

0: Dia.
1: Streaming on Rover.
2: Non-stop Bollywood.
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
2: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: चल ना, ऐ क्यों नखरे कर दी पई है। बेबे तुसी भी चलो, पापा जी नु हुनी बुलानी है मैं।
1: ले तुहानू इनविटेशन कार्ड भेजा।
0: छड्डो जी,
2: ब्रेकिंग न्यूज़ है कुड़ी, करो कहां गया है।

0: Night Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुस्बे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज, माइटेड एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के 1 आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ 1 घंटे में कलेक्ट करो. टीज एंड सीज अप्लाई. स्किप द क्यूज एट माइटेड एंड मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
6: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us, Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
2: चूज कीजिए कैसे आप सेव करते हैं विंगर मोटर्स में. 3.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

भी उसे नूर नूर कहता हूँ।

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: इश्क छुपता नहीं

0: flight on Hum.
1: Breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
4: That is very that is a very acceleration.
3: That's a very acceleration. Yeah.
4: Amazing acceleration.
3: This is my fancy English. That's a very.
4: अरे होता है यार सब चलता है आधी नींद में हूँ मैं.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels everyone. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare. जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton. ये हमेशा आपके पास है गो बनानास चाइल्ड केयर 12th बर्थडे ऑफर 6 मंथ्स कंप्लीटली फ्री एंड द फॉलोइंग 6 मंथ्स 50% ऑफ ऑन फीस फॉर ऑल एजेस ऑफर एंड्स 30th सितंबर लिमिटेड स्पेसेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड तो जल्दी ज्वाइन करो और एंजॉय करो स्पेशल ऑफर्स कॉल 0800 46 26 26 टुडे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह?
0: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिलफरेब।

0: जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा सा जिलो थोड़ा

0: चल हट बाजू हट ना कर खट पट मत लपट झपट नट खट ना कर खट पट मत लपट झपट चल हट बाजू हट नट खट हट जा।
1: मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू
2: कभी 101 कभी 102
1: उस दिन से हुआ फीवर ये शुरू
2: कभी 101 कभी 100

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ तो आड़ा फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare.

Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें. नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल हीलो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुगांव में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव अवे सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुगांव हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Winger Motors है आपका home of cherry, जहाँ नया SUV लेना is easier than you think.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuka and Poke Kohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम.
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि ड्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है.
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है.
5: और दैट्स नॉट गुड. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर. और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं.
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18.
8: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111. Or emergency services.

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट 8।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आज आपके साथ. एंड आज गणेश उत्सव के भी आखिरी दिन है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, इफ यू डोंट नो वेयर टू गो, हमारे पास आपके लिए सम लोकेशंस है. एक है श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट में हेंडरसन में, एंड यहाँ पर पूजा शुरू होगी 9 AM से एंड गणेश विसर्जन विल हैपन फ्रॉम 12 PM. And if you'd like to have more information, aap contact kar sakte ho Ram Mandir mein. And we also have 7 days Srimad Bhagwat Katha, jo 14th September se shuru hua tha, 7:30 PM se 9:30 PM every day Bharatiya Mandir mein. Aaj aakhri din hai, so aaj 7:30 to 9:30 PM aap Bharatiya Mandir ja sakte ho, and they're there to celebrate the divine spirit of devotion and 100 years of Pichwai. These are some of the events aaj ho raha hai. And Ved Prachar Week will be held from Monday 28th September ko up until Sunday 4th October ko at 32 Glasgow Avenue, Papatoe, from 6:20 PM. And ye program ki highlight hai, it is the 30th anniversary celebration of the establishment of Arya Samaj in New Zealand.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट समय हूँ आरजव के साथ. सो सक्सेस सबके लिए डिफरेंट है, इंडिविजुअल्स के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट सोसाइटीज के लिए डिफरेंट है, कल्चर्स सभी को डिफरेंट है. एंड एज अ साउथ एशियन माई सेल्फ मुझे भी पता है कि हाउ सोसाइटी की प्रेशर होता है कि हाँ ये सक्सेस है ये सक्सेस नहीं है एंड ऑल दैट. बट ऑब्वियसली 2026 में थिंग्स चेंज, पीपल हैव यू नो अपनी इंडिविजुअल सक्सेस में के लिए जा रहे हैं, विच आई रिस्पेक्ट इज़ वेल. सो विजय पूजा ने उनकी शो में दे रिसेंटली टॉक्ड and discussed with you hum family about how society measures success. Is it through home loans, ya fir marriage? Like, how's everyone redefining what it truly means to be settled? So if you'd like to listen to this, text BF on 5599 and I'll send you the link to the full discussion.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ। हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग इस फ्राइडे को होने वाला है 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापतोई में। रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन आप रोवा पर हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे। जॉइन द हम टी टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस। एंट्रीज फ्री फॉर ऑल। रिफ्रेशमेंट्स एंड कावा विल ऑल्सो बी ऑन सेल। यू विल ऑल्सो हैव द ऑपरचुनिटी टू विन प्राइजेज।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हूं आरिज आपके साथ एंड इफ यू लव टू लिसन टू बैक टू बैक पंजाबी हिट्स देन आप रोवा ऐप में आप सुन सकते हो ROVA यू कैन फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में एंड वहां जाकर आपको सर्च करनी है चढ़ती कला पंजाबी हिट्स जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एंड यू विल गेट नॉन स्टॉप अमेजिंग फ्रेश न्यू हिट्स ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स सो मैं हूं आरज़ू आपके साथ एंड नेक्स्ट अप आई विल टेलिंग यू ऑल द अमेजिंग बॉलीवुड मूवीज जो हमारी इवेंट सिनेमाज हो या फिर रीडिंग सिनेमाज में रिलीज होने वाला है सून.

0: Sunday Breakfast.
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आरज़ आपके साथ. सो ऑब्वियसली टाइम फॉर माय वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ऑफ द डे जहाँ पे मैं आपको शेयर करती हूँ कि कौन सी बॉलीवुड मूवीज़ न्यूजीलैंड की थिएटर्स में रिलीज़ होने वाला है. स्टार्टिंग ऑफ विथ जो रिलीज़ हो चुका है, वी हैव डेरा जिसमें करीना कपूर खान है एंड प्रतीक गांधी, एंड वी ऑल्सो हैड वाइब जो कि है कुणाल खेमू की डायरेक्टर रियल फिल्म, एंड ही ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द फिल्म. कास्ट में भी वो है, क्रू में भी वो है, एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट ये फिल्म में प्रीति ज़िंटा भी ऑल्सो है. सो एज समवन हु ग्रू अप वॉचिंग अ लॉट ऑफ प्रीति ज़िंटा की फिल्म्स, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम जो मैंने बॉलीवुड मूवी में आई सॉ हर. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर बैक ऑन द बिग स्क्रीन, एंड आई डोंट नो, वो वाइब की वाइब अच्छा लग रहा है मुझे, यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट. बट एनीवेज, जो मूवी नेक्स्ट रिलीज होने वाला है दैट इज द वन फॉरेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया है. इट इज़ अ फोकलोर हॉरर थ्रिलर. ये 25 सितंबर को रिलीज होने वाला है, एंड देन उसके बाद 2 अक्टूबर को वी हैव दृश्यम 3, दृश्यम द कंक्लूजन, जिसमें ऑफ कोर्स वी हैव अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और अक्षय खन्ना. एंड 9 अक्टूबर को वी हैव उड़ता तीर, जिसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान एंड राहुल बोस है. Yeah, so I'm very excited. I personally love a bit of thriller. So मुझे The One देखना, I'm excited for that. And definitely मुझे Vibe भी देखना है. दो दोनों movie. Let me know 5599 पे आप कौन सी movie के लिए excited हो.

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट सेट्स और मैं हूं आरजू आपके साथ एंड आई जस्ट वांट टू टेक अ मोमेंट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू रोशनी हु इज 15 इफ यू आर लिसनिंग टू दिस आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर लवली मैसेज एंड या अप्रिशिएट यू लिसनिंग एंड लविंग द शो एंड ऑब्वियसली थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट यू लव माय वॉइस थैंक यू सो मच रोशनी आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे एंड या अमेजिंग वीक

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. इस साल ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर है. आपको नोटिस हो चुका होगा कि विद ऑल दी पोस्टर्स एंड कैंपेन्स अराउंड द कंट्री, आपकी लोकल सबर्ब्स में भी. एंड इस साल हमारी ड्राइव शो सैंडी और रिज़्बे कुछ स्पेशल करने वाले हैं. एवरी थर्सडे को इट्स गोना बी अ स्पेशल इलेक्शन सेगमेंट जहाँ पे 5 to 6 PM दे गोना हेल्प यू गेट रेडी फॉर द बिग डे एंड बेटर अंडरस्टैंड ये पॉलिसीज एंड पोजिशंस ऑफ द पार्टीज शेपिंग आउतियारोआ न्यूजीलैंड की फ्यूचर. And in their first episode, they're going to be talking to David Seymour, ACDK party leader ke saath, and they're going to have an open conversation about ACT's policies and vision for New Zealand. They discuss the Treaty of Waitangi, comments made by Paramjit Parmar, immigration, ACT's proposal to freeze the adult minimum wage, and other issues shaping the country. So, yeah, make sure aap tune in kijiye every Thursday on Hum from 5 PM to 6 PM.

0: Good Vibes Sunday Style.
1: Sunday Breakfast on Hum.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट सेट समय हो आरजू आपके साथ एंड ऑफकोर्स इस हफ्ते तो वीक यो तेरे माओरी है माओरी लैंग्वेज वीक एंड एवरी आवर वी विल बी लर्निंग वर्ड्स या फिर अ फ्रेज टुगेदर सो हम घर में भी यूज़ कर सकते हो या फिर हमारी एवरीडे लाइफ में या काम में भी एंड टॉकिंग अबाउट काम लेट्स लर्न अ फ्यू वर्ड्स जो हम हमारे काम में भी यूज़ कर सकते हैं एंड काम की एक्चुअली वर्ड जो है मौरी में काम को आप माही बोलते हो माही एम ए एच आई माही विच मीन्स टू डू वर्क और मेक सो माही एंड हाँ वो माही वे वाला माही जो है या माही आप चलाते हो वो काम के लिए एंड देन द अनदर वर्ड दैट वी शुड लर्न टुगेदर इज हुई जो आप हम आपकी कलीग्स के साथ हो जो मीटिंग करते हो हुई So that's a hui. Hui means to gather, to assemble, ya fir a meeting. And then, who are you at a workplace? You're a worker. So usko aap kya bolte ho? Kaimahi. Kaimahi. So there's three words that we're learning today. Right now, I mean, mahi, jo ki hai work. Mahi. Dusra hai hui. H-U-I, hui. Jo ki hai aapki meeting. And the third word that we used and learned just now is kaimahi, jo ki hai worker. So aap jab Monday kal kaam wapas jaate ho, then maybe you should be like, oh, when's the hui happening? Ya fir, yeah, like yeah, I've got some mahi to finish. I've got some work to finish. And yeah, you can use it in your day-to-day life. I try to implement these words as well. Maybe day-to-day work life, maybe. I try to use mahi. And I should use more. So this is a great chance for me to also learn new words. So maybe kaam mein, ya phir ghar mein bhi I can use and utilize it even more.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
7: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
6: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
7: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
6: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
8: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 8 years.
9: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
10: IKEA.
11: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
12: अच्छा,
11: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
12: मिसेस सिंह,
13: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
14: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value, starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
1: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
15: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
16: और मैं नहीं करता।
1: दायरा, नाउ शोइंग इन सिनेमास।
16: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
17: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
1: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।
18: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट, समय हुआ अर्जव के साथ। सो क्रिकेट न्यूज़, न्यूजीलैंड विल बी होस्टिंग इंडिया फॉर 3-4 डे क्रिकेट मैचेस इन क्राइस्टचर्च एंड लिंकन, रनिंग फ्रॉम अक्टूबर 24 से नवंबर 10 तक। एंड ये होने वाला है लिंकन की ब्रिट सटक्लिफ ओवल में एंड क्राइस्टचर्च की हेगली ओवल में। एंड ये आप फ्री में आप अटेंड कर सकते हो देखने के लिए मैच, या फिर आप लाइव स्ट्रीम में भी देख सकते हो न्यूजीलैंड क्रिकेट की यूट्यूब चैनल से। एंड ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की स्केड्यूल है। फर्स्ट मैच अक्टूबर 24 से 27 तक ये लिंकन में होने वाला है, एंड देन द सेकंड मैच इज़ फ्रॉम अक्टूबर 31 से नवंबर 3 तक ये हेगली में होने वाला है, एंड द थर्ड मैच इज़ नवंबर 7 to 10 एंड ये फिर से लिंकन में होने वाला है। सो इफ़ यू फ्रॉम क्राइस्टचर्च और कैंटरबरी रीजन, देन ऑब्वियसली अमेजिंग, आप फ्री एंट्री में वॉच कर सकते हो। बट इफ़ यू आर आउट ऑफ क्राइस्टचर्च या कैंटरबरी, देन यू कैन स्टिल वॉच द मैचेस वाया न्यूजीलैंड की क्रिकेट यूट्यूब चैनल से।

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, तो मैं हूं आरजू आपके साथ. एंड इफ़ यू लव योर गोल्डन एरा बॉलीवुड के 60s एंड 70s के हिट्स, देन लिसन टू रोवा के नंबर वन म्यूजिक स्टेशन हम रिवाइंड, जहां पे आपको बैक टू बैक 60s और 70s के हिट्स मिलेगा. बट इफ़ यू आर मोर इनटू 80s की सॉन्ग्स, जस्ट बॉलीवुड 80s की सॉन्ग्स, देन लिसन टू रोवा के नंबर टू म्यूजिक स्टेशन. हाँ, ये बहुत पॉपुलर है, ये दो स्टेशन रोवा में. एंड ये स्टेशन का नाम है हम 80s जूक बॉक्स. यहाँ पे आपको 80s की एरा की बॉलीवुड म्यूजिक मिलेगा बैक टू बैक. एंड या सो इफ यू इनटू मोर ऑफ 80s, आपको हम 80s जूक बॉक्स अच्छा लगेगा. बट इफ यू इनटू मोर 60s एंड 70s, हम रिवाइंड इज फॉर यू.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो. गाना चला दो. गाना चला दो.

0: अरे आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, आजा बेबी आजा तेरा गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, गाना बजा दूं, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, आजा बेबी आजा, बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट समय हूँ आर्ज आपके साथ। आज श्रीराम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन पर गणेश उत्सव होने वाला है एंड इट इज़ द आखिरी दिन और पूजा शुरू होने ही वाले होने वाला है 9 बजे में 9 AM। सो इफ़ यू वुड लाइक टू गो आप जा सकते हो। 9 बजे से शुरू होने वाला है पूजा और गणेश विसर्जन 12 बजे 12 PM से होने वाला है। एंड 7 डे श्रीमद् भगवत कथा जो 14 सितंबर से शुरू हुआ था आज की भी आखिरी दिन है एंड आज का है 7:30 to 9:30 PM एट भारतीय मंदिर। एंड वेद प्रचार वीक होने वाला है 28 सितंबर से अक्टूबर 4 तक एट 32 ग्लासगो एवेन्यू पापतोय फ्रॉम 6:20 PM। और इस साल की प्रोग्राम की हाईलाइट है 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड।

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: सोना संसार पापा टोयोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
4: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइंस मिलते हैं, समझे?
3: सोना संसार पापा टोयोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोयोटो।
5: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोयोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
6: Briscoes, make some noise!
7: It's our birthday and everyone's invited to New Zealand's biggest house party at Briscoes, featuring 30 to 70% off house-wide till Sunday. Plus, we're giving away $25,000 cash. See online for T&Cs.
8: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
9: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
10: Auckland, it's time to sit back, relax and save big. The big sofa and recliner sale is on now at Lifestyle Furniture with up to 60% off. Stylish sofas, comfy lounge suites or the ultimate recliner. They've got something for every lifestyle. Recliner chairs start from just $399. Visit Lifestyle Furniture at Manukau, Mount Wellington or Westgate. Big style, big comfort, better prices. Hurry, up to 60% off on now.
11: Ladies and gentlemen,
12: unfiltered with Sandy and Rizvi, क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉल यूज बी से आरज़ब के साथ सैंडी जो है हमारी ड्राइव शो की एंड अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट की शी इज अ मैसिव फैन ऑफ दिलजीत दोसांझ बहुत बड़ा फैन है लाइक शी वाज वेरी डिल्यूजनल की कॉन्सर्ट में शी थॉट दिलजीत वाज पॉइंटिंग एट हर बट यू नो मैंने वो वीडियो देखा था एंड शी वाज ही वाज डेफिनेटली नॉट पॉइंटिंग एट हर ही वाज पॉइंटिंग एट समवन एल्स बट ऑब्वियसली लेट द गर्ल विन क्योंकि उनकी बहुत बड़ा फैन है कि इवन दो ही वाज फेसिंग टुवर्ड्स हर शी थॉट कि वो उनको पॉइंट कर रहे हैं बट यू नो लेट हर बी अ बिग फैन एंड आई विल टेल हर हाँ ठीक है एट फर्स्ट आई वाज लाइक आर यू श्योर एंड देन उन्होंने बोला लुक लुक आई वाज लाइक ठीक है बहुत एक्साइटेड है सो आई एम नॉट गोना बर्स्ट आपकी बबल इफ यू लिसनिंग टू दिस आई एम सॉरी सैंडी बट एनीवेज दिलजीत दोसांझ जो है ही इज सो इनक्रेडिबली टैलेंटेड लाइक वो एक्टिंग भी करते हैं मूवीज में भी है आई डोंट नो हाउ वो अपनी टाइम मैनेज करते हैं हाउ डज ही गो ऑन शूटिंग्स इट्स नॉट लाइक शूटिंग एक हफ्ते की है या फिर दो हफ्ते की इट कैन आई फील लाइक इट टेक्स लॉन्गर देन दैट सो फिल्म शूटिंग भी करते हैं ही राइट्स सॉन्ग्स ही मेक्स सॉन्ग्स एंड उसके बाद द वर्ल्ड टूर भी करते हैं एंड ऑब्वियसली मूवी की भी तो प्रमोशन है एंड इट जस्ट मेड मी लाइक वाओ वो जहाँ भी लाइक ही इज़ लाइक ही इज़ आई थिंक वन ऑफ दोज रेयर वंस जो एक्टिंग में भी कर रहे हैं अच्छे काम एंड ऑल्सो यू नो लाइक सिंगिंग में भी करियर बहुत अच्छा है लाइक दैट्स लाइक अनरियल बट या आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट बट सेइंग दैट आई वांटेड टू आस्क यू इज देयर एनी अदर लाइक एक्टर्स या सिंगर हु आर बिट ऑफ बोथ एक्टर सिंगर जो आपकी फेवरेट है लेट मी नो 5599 पर एंड आई विल रीड आउट आपकी फेवरेट इन द नेक्स्ट ब्रेक

0: Sunday. Thanks a lot.
1: Sunday Mood Meter.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर सेट में हूं आरजब के साथ. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक बॉलीवुड एक्टर्स जो सिंगर्स भी हैं, बट ऑब्वियसली नो वन कैन मैच द लेवल दिलजीत दोसांझ. ही इज एन इनक्रेडिबल एक्टर. उसके ऊपर ही डज ही मेक्स सॉन्ग्स, गाना बनाते हैं, चार्ट स्टॉप करता है करते हैं. या लेट्स सी, लेट्स पुट रिस्पेक्ट, चार्ट स्टॉप करते हैं एंड ऑल्सो टूर करते हैं, नॉट जस्ट इंडिया में बट वर्ल्ड टूर. एंड ही इज सेलिंग आउट लाइक अरीनास एंड लाइक इट्स सो इनक्रेडिबल दैट ही कैन बैलेंस बोथ. आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई कैन एवर डू दैट, बट लाइक ही इज अनरियल एंड ही डिजर्व्स ऑल द लव एंड एवरीथिंग. एंड यू नो विच गॉट मी थिंकिंग, आपका कौन है फेवरेट एक्टर स्लैश सिंगर जो दोनों कर सकते हैं? टेक्स्ट 3559. पर्सनली मुझे फरहान अख्तर बहुत पसंद है. I used to really admire the fact कि वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फिल्म्स भी बना सकते हैं एंड ऑल्सो गाना भी गाते हैं. रिमेंबर लाइक रॉक ऑन की सॉन्ग्स लाइक तुम हो तो एंड ऑल्सो एक्टिंग भी. सो या लाइक इट्स सो गुड एंड आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट हिज फेवरेट मूवीज दैट ही एक्टेड इन इज डेफिनेटली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एंड भाग मिल्खा भाग. It was amazing work from Farhan Akhtar and he's made some great movies too. So yeah, that's my favorite. Aapka kaun hai? Let me know 5599 per.

0: Just love me.
1: कैसा है आपका मूड?
2: अब तो मेरी जिंदगी बन गई. Thanks a lot.
1: Sunday Mood Meter.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीक से, मैं हूं आरज़ आपके साथ. सो आई थिंक इट वाज लास्ट संडे, शो के बाद मैं और मेरी कजन्स हम पीहा बीच गए थे. एंड पीहा बीच में आई वांटेड शो माय कजन, क्योंकि उसका पहली बार है ऑकलैंड में. सो वांटेड शो हिम अराउंड एंड यू नो शो ऑल दिस ब्यूटीफुल बीच ब्लाह ब्लाह. But then after that, my sister suggested कि हम walk करें वो Mercery Loop. And I was like, girl, हमारे पास जूते अच्छे नहीं हैं. I literally had चप्पल. I had Birkenstock on. And I was like, I don't know. She's like, oh, it'll be all good. And then, I don't know why I thought. And I was like, wait a minute. To be honest, you know, जब like us or anyone else goes to Everest Base Camp या फिर any other trekkings in Nepal, वहाँ की जो भैया है, दीदी है, सब लोग चप्पल में ही तो यू नो वॉक करते हैं. सो आई वाज लाइक लेट्स चैनल आर इनर नेपाली, इनर गोरखाली एंड लाइक लेट्स वॉक चप्पल में भी. एंड गेस व्हाट, इट वाज ऑल गुड. आई कैन कंफर्म कि मुझे कुछ भी वो ब्लिस्टर्स वगैरह कुछ भी नहीं आया था मेरे लेग्स में, फुट में. आई वाज कम्प्लीटली फाइन एंड आई या इट वाज ऑल गुड. सो इफ़ आप यहाँ बीच गए हैं एंड देन यू स्पॉन्टेनियसली वांट टू वॉक Mercery Loop, then I highly recommend. Because yeah, it's all good. आप normal shoes में भी कर सकते हो and also चप्पल में भी, because I'm your living, I guess proof कि आप चप्पल में भी वो walk कर सकते हो. Beautiful view by the way, highly recommend.

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: ज्यादा प्रोजेक्ट टाइम चाहिए? यस प्लीज, माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन के वन आवर क्लिक एंड कलेक्ट के साथ ऑनलाइन ऑर्डर करो और सिर्फ एक घंटे में कलेक्ट करो। टीज एंड सीज अप्लाई। स्किप द क्यूज एट माइटी 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन।
3: You're planning a quick pop to the shops, but then life hits the fan. Luckily, DoorDash now delivers everything from the warehouse. Groceries, PJs, toys, even their new lunchbox. In a dash. Now that's a good call. Dash!
4: How fresh is your produce? At Barro, our team are at the markets at 3 a.m, handpicking the best, freshest seasonal produce direct from local farmers. It's loaded straight onto our trucks and whisked to your nearest Barro store, ready for tonight's dinner. That means fresher, more flavoursome fruit and veg that lasts longer. New season asparagus, luscious tomatoes, bright juicy berries. All at the market's best prices. It's fresher from Faro.
5: 80s give retro gunning.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: Wow, these kebabs are amazing. Spices make them right and meat is so juicy.
1: Ye hai Amma's Kebabs promise, delivering happiness bite by bite. Amma's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
2: 100% authentic and pure as mother's love.
3: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रो सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट। नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रो सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: Create the outdoor space you love with Mitre 10. Add color to your space with evergreen azaleas, now $16.49 for a 125mm pot. Or freshen up your deck with Boriswood Deck and Timber Stain, now $185 for 10 litres. Mitre 10, your home for outdoor living.
5: You're invited to IKEA Open House. Join us in store for 4 days of offers, inspiring ideas and family fun. Visit your local IKEA from 18 to 21st of September.
6: IKEA.
7: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
8: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
9: और मैं नहीं करता।
7: दायरा नाउ शोइंग इन सिनेमास।
9: ओपन शोकेस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
10: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
7: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
11: Sunday breakfast.
12: Zaika, to feel ho. Tickle your taste buds.
13: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ। आज की टिकली टेस्ट बड्स के लिए हम जा रहे हैं साउथ कोरिया।

आप सुन रहे हैं हम पहीं बॉलीवुड की सेहत में हूँ आरज़ब के साथ एंड आज की टिकली टेस्ट बात के लिए हम जा रहे हैं कोरिया साउथ कोरिया एंड ये डोमिनियन रोड में या फिर आप नॉर्थ शोर में हो दिन की कुछ नॉर्थ शोर की इट्स अ रेस्टोरेंट कॉल कांगचोन KANG CHON यहाँ पे आपको चाइनीज कोरियन क्यूजीन मिलेगा एंड इफ यू नॉट फेमिलियर आप कोरियन ड्रामास नहीं देखते हो बट इफ़ यू आर बिग फैन ऑफ कोरियन ड्रामास दिस माइट बी गुड न्यूज़ फॉर यू एज़ वेल वहाँ पे आपको जाजांगमियोन मिलेगा सो जाजांगमियोन इज़ बेसिकली ब्लैक बीन नूडल्स इसमें पोर्क है लिटिल पोर्शंस एंड इट इज़ अमेजिंग एंड आपको जामपोंग भी मिलेगा जामपोंग इज़ लाइक अ सी फूड सूप स्पाइसी सूप एंड आपको राइस के साथ मिलेगा एंड इट इज़ सो यमी एंड ओह माय गॉड इमेजिन दैट मुझे पानी आ गए मुँह में एंड देन वहाँ की यू कैन ऑल्सो ट्राई आउट स्वीट एंड साउर पोर्क या फिर स्वीट एंड साउर चिकन इफ़ यू लाइक चिकन एंड ऑल्सो वहाँ की वन ऑफ दिस अमेजिंग डिश इज़ कॉल्ड कंपुंगी जिसमें आपको स्पाइसी चिकन मिलेगा इट्स मोर सेवरी एंड स्पाइसी एंड ओह इट इज़ सो यमी एंड आपको अनलिमिटेड रेडिश पिकल भी मिलेगा their service is amazing so highly recommend Kangchon in Dominion Road yeah fair not sure

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: At Bunnings, lowest prices are just the beginning. And you can also earn Bunnings rewards in every aisle. Whether you're just popping in or stocking up for a project, a trip to Bunnings can make you feel more rewarded. Simply download the Bunnings app and join Bunnings Rewards today. T's and C's and exclusions apply.
9: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Merugao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance low. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merugao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
10: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
11: Every dream begins with a first step, including the dream of calling a place home. At Mega Finance, we help make that happen. Buying your first home with a 5% deposit, new to New Zealand. Refinancing, building, investing, or buying a business or commercial property. Parmesh can help. With 30 plus years of banking experience, get personalized advice and lending solutions tailored to you. Call 0800 Mega Finance. Home loans made easy. That's 0800-634-234. TCs and lending criteria apply.
0: Brewing good vibes, Sunday style.
12: Sunday breakfast on Hum.
0: Zaika, to feel ho. Tickle your taste buds.
13: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर से, तो मैं हूँ आरज़ आपके साथ. टिकटॉक में, सोशल मीडिया में, ऑलवेज लाइक सम ट्रेंड्स गोइंग अराउंड, जहाँ पे फूड यू नो लाइक रीमिक्स होता है, दिस एडेड टू दैट एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये मैंने देखा था फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स एंड दिस इज इट्स साउंड्स क्रेजी बट ऑल्सो लाइक इट मेक्स सेंस भी. सो बेसिकली आपको पिज्ज़ा को आप चिकन, बटर चिकन में डिप करके यू ईट इट. या जस्ट गेट नान. आई नो जस्ट गेट नान. बट नो, ये पिज्ज़ा स्लाइस लेकर दे डिप इट इनटू द चिकन, बटर चिकन की सॉस में एंड दे ईट इट एंड एवरीवन हैज़ बीन लाइक टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट इट. अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं किया है, बट इट डज लुक डिलिशियस एंड आई वॉन्टेड टू नो आप क्या आपने ट्राई किया है ये. 5599 पे प्लीज़ मैसेज मी इफ यू हैव ट्राइड ये कॉम्बो, जहाँ पे आप एक यू नो चिकन पिज्ज़ा या एनी पिज्ज़ा को लेकर आप बटर चिकन में डिप करके आपने खाया होगा. एंड पीपल इन द कॉमेंट सेक्शन, सम ऑफ द पीपल वर सेइंग लाइक ओह दिस इज सो गुड, दिस इज अमेजिंग. एंड देयर वाज फ्यू कॉमेंट्स जहाँ पे दे वर सेइंग जस्ट बाय बटर चिकन पिज्ज़ा, वो भी है, बट यू नो लाइक द क्रीमीनेस ऑफ लाइक द सॉस, इट मस्ट बी गुड. एंड थिंकिंग अबाउट दैट, आई डेफिनेटली वांट टू ट्राई आउट. मे बी टुडे या फिर दिस वीक समटाइम. बट लेट मी नो इफ आपने ट्राई किया है. आई वुड लव टू नो आपकी रिव्यू.

0: Run a race like me.
1: Non-stop Bollywood.
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: Radio. Streaming on Rover.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Chill, sip, smile.
3: This is Sunday Breakfast.
4: आप सुन रहे हैं हम प्लीज बॉलीवुड स्पीकर्स से मैं हूं आरजब के साथ. हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग इस फ्राइडे को होने वाला है, फ्राइडे 25 सितंबर एट द वैदिक सेंटर इन पापाटोई. एंड सो रिकॉर्डेड कलाकारों की कीर्तन आप रोवा पर हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे. सो जॉइन अस हमारी हम टीम को टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस. एंट्री बिल्कुल भी फ्री है एंड आपको रिफ्रेशमेंट्स और कावा आप खरीद सकते हो ऑन साइट एंड यू विल ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटीज टू विन प्राइजेस. सो इस फ्राइडे 25 सितंबर को एट वैदिक सेंटर एट पापाटोई.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
3: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
4: अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
7: Kaafinatia a Bunnings kia whakapiki ai tō māra I tēnei koanga. Bunnings helps you to elevate your garden in spring. It's a great time to get the one, soil, ready and old, or new garden beds.
8: You reset, you recycle, you dig and start all over.
7: Whether you're thinking about planting huarākau, fruit, huawhenua, veggies, putiputi, flowering plants, or rākau, native trees, we've got what you need. Come into Bunnings and have a quarter with us to get your garden humming this koanga.
9: Bunnings Warehouse!
10: Settle, win, escape. Finance World is about to take you further with a trip to Bali. Settle kijiye apna home loan of 500,000 ya usse zyada Finance World ke saath. And you're automatically in the draw to win a trip to Bali for 2, 5 days, 4 nights, 2 lucky winners. Har eligible home loan of 500,000 ya usse zyada automatically aapko draw mein enter karta hai. Terms and conditions apply. Visit financeworld.co.nz/Bali. Finance World Limited is a registered financial advice provider.
11: Brewing good vibes, Sunday style.
12: Sunday breakfast on Hum.
13: आप सुन रहे हो हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हैं, तो मैं हूँ आरजू आपके साथ। एंड इफ यू गोइंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस ऑफ 2026, जो कि आज की सेमीफाइनल्स ऑफ एनआरएल लीग, वॉरियर्स वर्सेस नाइट्स, व्हिच इज गोइंग डाउन एट ईडन पार्क। आई विल टेल यू मोर नेक्स्ट अबाउट ऑल द थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर हेडिंग देयर फॉर द गेम।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Ka awhinatia a Bunnings kia whakapiki ai tō māra I tēnei kōanga. Bunnings helps you to elevate your garden in spring. It's a great time to get the one, soil, ready and old, on your garden beds.
7: You reset, you recycle, you dig and start all over.
6: Whether you're thinking about planting huarākau, fruit, huawhenua, veggies, putiputi, flowering plants, or rākau, native trees, we've got what you need. Come into Bunnings and have a kōrero with us to get your garden humming this kōanga.
8: Briscoes, make some noise!
9: It's our birthday and everyone's invited to New Zealand's biggest house party at Briscoes, featuring 30 to 70% off housewide till Sunday. Plus, we're giving away $25,000 cash. See online for T&Cs.
10: Weird. I thought we still had bananas.
11: New World Express Delivery. Get your groceries in as little as 60 minutes. T&Cs and exclusions apply. See online for details.
12: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
13: Online person, phone person, or I want to speak to a real person. MTF Finance gets it. You can apply online, give them a call, or visit one of their 55 local teams around New Zealand. And because MTF knows finance isn't one size fits all, they'll talk about it the way that works for you. However you'd like to talk about your next loan, MTF will meet you there. Search MTF Finance today. Lender criteria and checks, terms, conditions and fees apply. See mtf.co.nz/terms. You're gonna see.
14: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड स्पीकर्स हैं, सो मैं हूं आरज़ाब के साथ। एंड इफ यू लव क्रिकेट देन दिस विल बी अ न्यूज़ फॉर यू। न्यूजीलैंड विल बी होस्टिंग इंडिया फॉर 3-4 डे मैचेस इन क्राइस्टचर्च एंड लिंकन, रनिंग फ्रॉम अक्टूबर 24 टू नवंबर 10, सो नेक्स्ट मंथ। एंड सो लिंकन में होने वाला है बर्ट सटक्लिफ ओवल में, एंड क्राइस्टचर्च में हिगली ओवल। एंड योर ब्लैक कैप्स विल बी कम्पीटिंग विद टीम इंडिया, सो आप अटेंड कर सकते हो ऑल 3-4 डे मैचेस विथ फ्री एंट्री, बट लाइव स्ट्रीमिंग विल ऑल्सो बी अवेलेबल वाई न्यूजीलैंड क्रिकेट यूट्यूब चैनल। सो स्केड्यूल है इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए, फर्स्ट मैच अक्टूबर 24 से 27 तक, ये लिंकन में होने वाला है। एंड द सेकेंड मैच अक्टूबर 31 से नवंबर 3 तक, ये हेगली पार्क, हेगली ओवल में होने वाला है क्राइस्टचर्च की। एंड इन थर्ड मैच वी हैव नवंबर 7 से 10 तक एट बर्ट सटक्लिफ ओवल, फिर से लिंकन में। एंड सो या, इफ़ यू लाइक टू, इफ़ यू आर फ्रॉम क्राइस्टचर्च, यू आर लकी, क्योंकि आप जा सकते हो वहाँ जाकर फ्री में व्यू करने के लिए। एंड इफ़ यू आर इन रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इफ़ यू वुड लाइक टू कीप अप विद द मैचेस एंड स्टफ, यू कैन गो वॉच इट ऑन न्यूजीलैंड क्रिकेट्स यूट्यूब चैनल।

आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स और मैं हूं आरज़ू आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन. हैंग आउट विद मी. आई विल सी यू सून एंड काकिते.